0: साहेब देखे कटुआ
1: हरियाणी है ना साहेब देखे ही कटुआ हाँ हरियाणी वहाँ पीएम जब लोग देखा हुई चलो बने लोग कतार नहीं बिल्कुल ऐसे रहा यार दूसरा ना दिल्ली आती है ना साहेब देखा ही कटुआ देखा साहेब देखा ही कटुआ